0: Radiation, the number one station for the boggle for the Asian. Boggle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
2: चलिए
0: बलदेव, रिस्पेक्ट टू यू ब्रो। प्लॉट नंबर 13, प्लॉट नंबर मेरा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट, नंबर मेरा। बट या, प्रेस द बटन करेक्टली। दिस ट्रैक Verdian. The last track. Got a message coming. Wang, Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines, on My Roots. This track over here, Verdian, which just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So X, who's he on the track with? X Fader. Featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the boggle for Asian. Boggle Asian.
6: One time.
7: You better be looking behind you when you walk.
8: Do it. X

0: Radiation.
1: Hey, this is Just Fritz, and you're listening to Radiation, the number one station for the Asian invasion.
2: मेरी कुड़ी ओदी सेहत ठीक नहीं अद्धी रात मिनी स्कर्ट पाके क्लबां च चीका मार के टपदी आ
3: कोई ना वीरा असी डिजायर्ड इफेक्ट नु सदूंगे
4: उपड़ वाले का ना जप्पो किसी ने मैनु बुलाया 500 पाउंड मैनु दान कर लो नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमरा किथे आ
2: इत्थे आपड़ 10 दिनां च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं बस बड़कर चिप्स चबी जांदी आ
4: अच्छा इनिशियल डायग्नोसिस शक्ल इज रादर पैड़ी एंड टॉप लिप वेरी हैरी 2000 पाउंड दान कर लो मेरे नाल जप्पो
5: द पावर ऑफ रेडिएशन कंपेल्स यू Random guys off Soho Road compel you. Pervy uncles with x-ray glasses compel you. To leave this girl's forsaken body so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
0: Radiation, the number one station for the Bargle Asian.
6: Hi, yeah, I just left the date and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute. He was a musician. He was super powerful.

0: happen on Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let's give it an appropriate sort of intro.
1: मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी।
2: Okay, doctor.
1: Relax, relax yourself, totally relax yourself. मतलब अपने हाथ पाव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो।

0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओह, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द, यू ऑलवेज से no one has sent in or referenced a line more pervy or lecherous than that one. That's what I'm trying to say. And you know, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah? Right at the end, like they're looking over at, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, it's just too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Shinda, Local Attraction. And Radio Asian, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Bottom. Here we go.
3: Radio Asian, the number one station for the Pagal Asian.